0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्गी एफएम 95 मेगाहर्ज। सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार है।

0: 우리 성경농장
1: 먼지 하나 빼면 열심히
2: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
3: लाइन मार रही हो।

0: slip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: सकेसम्म कोही कसैलाई बिरामी हुन नपरोस्। यदि बिरामी भए

0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुलेर जियौ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: बसंत को माया लुहावा चलदा, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलदा, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हर तो दिए के होलन है ना। हाँ ती याद हरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छाद आयो
1: पहचाने सामी सिते
2: कुसुमे रुमान कुसुमे

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सेंग दे पिम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज